0: You were listening to an episode of our program Radio Sai Bhajan Classroom. This episode was first aired on the 14th of July 2016 as part of Thursday Live from Prashanthinilam on Asia Stream of Radio Sai Global Harmony. This program was hosted by Team Radio Sai's Bishu. Thank you and Sai Ram.
1: You are tuned to Radio Sai Global Harmony, bringing you 24 hours a day the message of love of Bhagwan Sri Satya Sai Baba.
2: Bhagwan Sri Satya Sai Baba ne सन 1973 के ग्रीष्मकालीन कक्षाओं में श्री आदि शंकराचार्य विरचित भज गोविंदम पर महत्वपूर्ण प्रवचन प्रदान किए। इन प्रवचनों में भारतीय आध्यात्मिकता और वेदों का सार भरा हुआ है, जिन्हें सबको सुनकर लाभान्वित होना चाहिए। अब आप भगवान बाबा द्वारा दिनांक 20 जून 1973 को दिया गया प्रवचन सुनेंगे।
3: भूमिका। भगवान बाबा अपने इस माधुर्यपूर्ण प्रवचन में जीवन में गुरु की आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डालते हुए एक आदर्श गुरु के तत्वों को उजागर करते हैं। प्रायः उद्धृत किए जाने वाले श्लोक गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरः के आंतरिक अर्थ को भी स्वामी ने यहां स्पष्ट किया है। लौकिक विद्या की अपेक्षा आध्यात्मिक विद्या प्रदान कर उसे शिष्य की अनुभूति में लाने वाले गुरु को ही स्वामी महान एवं श्रेष्ठ मानते हैं। इसके लिए स्वामी गुफा में निवास करने वाले एक महात्मा का रूपक प्रस्तुत करते हैं। प्रवचन को समापित करते हुए भगवान बाबा छात्रों को हिदायत देते हैं कि तथ्यों को रटने मात्र से कोई प्रयोजन नहीं है, अतः तथ्यों का आचरण कर छात्रों को आध्यात्मिक संपत्ति से लाभान्वित होना चाहिए।
4: गुरु चरणाम्बुज निप

0: You are listening to Radio Sai Global Harmony. Radio Sai brings to you every day the teachings and the universal message of love of Bhagavan Sri Satya Sai Baba.
1: We now bring you a recital from the Sikh scripture, the Guru Granth Sahib.
2: Bilawal Mahalla Panjwa, man kya kehta, haon kya kehta, jaan parbheen o thakur prav mere, tisya gya kya kehta rahao, an bole kau tuhi pishana, jo jiyan mein hota, re man kae kahan lau dehka, jau pehti sang sunta, aiso jaan pae man anand, aan na biyo karta, कहो नानक गुर पहे दयारा हर रंग न कभू लहिता बिलावल महला पंजवा निंदक ऐसे ही चर परी है एह निशानी सुनो तुम पाई जो कालर पीत गिरी है रहाओ जो देखे शिदर तो निंदक उमा है पलो देख दुख परी है आठ पहर चितवे नहीं पहुंचे बुरा चितवत चितवत मरी है निंदक प्रभु पुलाया काल नेरा आया हर जन स्यों बाद उठरी है नानका रखाया प्रभु स्वामी क्या मानस बपरे करी है बिलावल महला पंजवा ऐसे काहे पूल परे करे करावे मुकर पावे पेखत सुनत सदा संघरे रहाओ काज बिहाजन कंचन छाडन बैरी संग हेत साजन त्याग खरे होवन कौरा अनहोवन मीठा बिखिया मैं लपटाए जरे अंधकूप मैं परे उपरानी परम गुबार मोहे बंद परे कहो नानक प्रभ हो दयारा गुर पेटे काडे भा फरे बिलावल महला पंजवा मंतन रसना हर चीना पय आनंदा मिटे आंदे से सर्व सुख मोखो गुरदीना रहाओ ਇਆਨਪ ਤੇ ਸਭ ਪਈ ਸਿਆਨਪ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਹੱਥ ਦੇ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਕਹੋ ਕਾਹੂ ਨਾ ਕਰਤੇ ਕਛ ਕੀਨਾ ਬਲ ਜਾਵੋ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਧੂ ਕੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਨਾਮ ਲੀਨਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ ਪਾਰੋਸੈ ਕਹੂ ਨਾ ਮਾਨਿਓ ਮਨ ਸ਼ੀਨਾ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰਪੂਰੈ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਦੀਨੋ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲ ਗਈ ਰਹਾਓ निवरे दूत दुष्ट बहराई गुरपूरे का जपया जाप कहां करे कोई बेचारा प्रभ मेरे कावड़ प्रताप सिमर सिमर सिमर सुख पाया चरण कम

तन मन अर्पै है वो जिसका, ना यो आवै ना हो जाए, नानक साचे साच समाए। बिलावल महला तीजा, अष्टपदी कर दसवाए, को ओंकार सतगुर प्रसाद। जग कौआ मुख चुंच ज्ञान, अंतर लोभ झूठ मान, बिन नामै पाज रह निदान। सतगुर सेव नाम वसै मन चीत, गुर भेटे हर नाम चितावै, बिन नामै होर झूठ प्रीत रहाओ। गुर कहे आसा कार कमावो, शब्द चीन सहज कर आवो। साचै नाए वडाई पावो, आप न बूझै लोक बुझावै, मन का अंधा अंध कमावै। दर कर महल ठौर कैसे पावै, हर जियो सेवियै अंतर जामी। घट घट अंतर जिसकी जोत समानी, तिस नाल क्या चलै पहनामी। साचा नाम साचा शब्द जानै, आपै आप मिलै चुकै अभिमानै। गुरमुख नाम सदा सदा वखानै, सतगुर सेवै दूजी दुरमत जाई। औगुण काट पापा मत खाई, कंचन काया ज्योति जो समाई। सतगुर मिलै वड्डी वड्याई, दो काटे हृदय नाम वसाई। नाम रते सदा सुख पाई, गुरमत मानिया करनी सार। गुरमत मानिया मोख द्वार, नानक गुरमत मानिया परवार साधार। बिलावल महला चौथा, अष्टपदियां कर ग्यारवां, एको अंकार सतगुर प्रसाद। आपै आप खाए हो मेटै, आन दिन हर रस गीत गवैया। गुरमुख परचै कंचन काया, निरपव ज्योति ज्योत मिलैया। मैं हर हर नाम आधार रमैया, खिन पल रह न सको बिरनावै। गुरमुख हर हर पाठ पढ़ैया रहाओ। एक गिराओ दस द्वार हैं जाके, अहन सो तस्कर पंच चोर लगैया। धर्म अर्थ सब हिर ले जावै, मनमुख अंदले खबर ना पैया। कंचन कोट बहुमानक भरिया, जागे ज्ञान तत् लिव लैया। तस्कर हेरू आए लुकाने, गुर कै शब्द पकड़ बंद पैया। हर हर नाम पोत बोए था, खेवट शब्द गुरपार लंगैया। जम जागाती लेण न आवै, ना को तस्कर चोर लगैया। हर गुण गावै सदा दिन राती, मैं हर जस कहते अंत न लहिया। गुरमुख मनुआ इकत घर आवै, मिलो गोपाल निशान बजैया। नैनी देख दर्श मंत्र बतै, श्रवण बाणी गुर शब्द सुनैया। सुन सुन आत्म देव है पीने, रस रस राम गोपाल रवैया। त्रै गुण माया मोहे वे आपे, तुरिया गुण है गुरमुख लैया। एक दृष्ट सब सम कर जान है, नदरी आवै सब ब्रह्म पसरैया। राम नाम है ज्योत सबाई, गुरमुख आपे अलख लखैया। नानक दीन दयाल पए है, भगत पाए हर नाम समैया। बिलावल महला चौथा, हर हर नाम शीतल जल त्यावो, हर चंदन वास सुगंध गंदैया। मिल सत संगत परम पद पाया, मैं हृद पलास संग हर बुहिया। जप जगन्नाथ जगदीश गुसैया, शरण परे से जन उबरे। ज्यों प्रहलाद उदार समैया रहाओ। पार अठारह मैं चंदन यूतम, चंदन निकट सब चंदन हुईया। साकत कूड़े ऊब सुख हुए, मन अवमान विछड़ दूर गईया। हर गतमित करता आपे जाने, सबिद हर हर आप बनैया। जिस सतगुर भेटे सो कंचन होवै, जो तुर लिखिया सो मिटै न मिटैया। हर रतन पदार्थ गुरमत पाए, सागर भगत भंडार खुलैया। गुरचरणी एक सरदा उपजी, मैं हर गुण कहते तृप्त ना पहिया। परम बैराग नित नित हर त्याए,
मैं हर गुण कहते पावनी कहिया, बार बार खिन खिन पल कहिए, हर पार ना पावै परे परैया। शास्त्र वेद पुराण पुकारे, धर्म करो खट कर्म दृढ़ैया, मनमुख पाखंड परम विगूते, लोभ लहर नाव पार बुढ़ैया। नाम जपो नामे गत पावो, सिमरत शास्त्र नाम दृढ़ैया, होमै जाए ता निर्मल होवै, गुरमुख परचय परम पद पैया। एहो जग वर्ण रूप सब तेरा, जितला वैसे कर्म कमैया। नानक जंत वजाए वाजै, जित पावै तित राहे चलैया। बिलावल महला चौथा, गुरमुख अगमया गोचर ध्याया, हों बल बल सतगुर सतपुरखैया। राम नाम मेरा प्राण वसाए, सतगुर परसार नाम समैया। जन की टेक हर नाम टकैया, सतगुर की तर लागा जावा, गुर कृपाते हर दर लहिया रहाओ। एहो शरीर कर्म की धरती, गुरमुख मथ मथ तत कढ़ैया। लाल जे वेहर नाम परगासिया, पांडे पाओ पवै तितैया। दासन दास दास होए रहिया, जो जन राम भगत निज पैया। मन बुद्ध अर्प धरो गुरे आगै, गुर प्रसादी मैं कथ कथैया। मनमुख माया मोहे वे आपे, एहो मन तृष्णा जलत दिखैया। गुरमत नाम अमृत जल पाया, अग्न बुझी गुर शब्द बुझैया। एहो मन नाचै सतगुरे आगै, अनहद शब्द तुन तूर वजैया। हर हर उसत करै दिन राती, रख रख चरण हर ताल पूरैया। हर कै रंग रता मन गावै, रस रसाल रस शब्द रवैया। निज कर धार चुवैत निर्मल, जिन पिया तिन्ही सुख लैया। मन अठ कर्म करै अभिमानी, ज्यो बालक बालू कर उसरैया। आवै लहर समुद सागर की, खिन मैं भिन्न भिन्न टै पैया। हर सर सागर हर है आपे, एहो जग है सब खेल खिलैया। ज्यों जल तरंग जल जलै समावै, नानके आपे आप रमैया। बिलावल महला चौथा, सतगुर परचै मन मुंदरा पाई। गुर का शब्द तन पसम दृढ़ैया, अमर पिंड पहे साधु संग। जन्म मरण दो मिट गैया, मेरे मन साध संगत मिल रहिया। कृपा करो मधुसूदन माधव, मैं खिन खिन साधु चरण पखैया रहाओ। तजै ग्रस्त भया बनवासी, एक खिन मनुआ टिकै ना टिकैया। तावत ताहे तदे कर आवै, हर हर साधु शरण पवैया। तिया पूत छोड़ सन्यासी, आसा आस मन बहुत करैया। आसा आस करे नहीं बूझै, गुर कै शब्द निरास सुख लहिया। उपजी तर्क दिगंबर होवा, मन दै दिस चल चल गमन करैया। पर पवन करै बूझै नहीं तृष्णा, मिल संग साध दया कर लहिया। आसन सिद्ध सिखै बहु तेरे, मन मांगै रिद सिद्ध चेटक चेटकैया। तृप्त संतोख मन शांत ना आवै, मेरे साधु तृप्त हर नाम सिद्ध पैया। अंडज जेरज सेतज उत्पुज, सब वर्ण रूप जी जंतो पैया। साधु शरण पर ऐसो उबरै, खत्री ब्राह्मण सूद वैसो चंडाल चंडैया। नामा जय देव कंबीर त्रिलोचन, औ जात रविदास चमयार चमैया। जो जो मिले साधु जन संगत, धन धन्ना जट सैन मिलया हरदैया। संत जना की हर पैज रखाई, भगत वछल अंगीकार करैया। नानक शरण परे जग जीवन, हर हर कृपा तार रखैया। बिलावल महला चौथा, अंतर प्यास उठी प्रभ केरी। सुन गुर बचन मन तीर लगैया, मन की बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर परैया। राम गुर मोहन मोहे मन लैया, हों आकल बिगल पई गुर देखे। हों लोट पोट होए पैया रहाओ, हों निरखत फिराओ सब दे दिसंतर।
मैं प्रभु देखन को बहुत मन चाहिया, मन तन काट दे गुरे आगे, जिन हर प्रभु मार्ग पंथ दिखाइया। कोई आण संदेशा दे प्रभु केरा, हृदय अंतर मन तन मीठ लगैया, मस्त काट दियो चरणा तल, जो हर प्रभ मेले मेल मिलैया। चल चल सखी हम प्रभ प्रबोधै, गुण कामन कर हर प्रभ लैया। भगत वछल उवा को नाम कहियत है, शरण प्रभु तिस पाछै पैया। खिमा सिंगार करे प्रभ खुशियां, मन दीपक गुर ज्ञान बलैया। रस रस भोग करे प्रभ मेरा, हम ते स्यागे जियो कट कट पैया। हर हर हार कंठ है बनया, मन मोती चूर बड गहन गहनैया। हर हर सरदा सेज विशाई, प्रभ छोड़ ना सके बहुत मन पैया। कह प्रभ अवर अवर किश की जय, सब बाद सिंगार फोगट फोगटैया। कियो सिंगार मिलन कहताई, प्रभ लियो सुहागन थूक मुख पैया। हम चेरी तू अगम गुसाई, क्या हम करे तेरे वसपैया। दया दीन करो रख ले वो, नानक हर गुर शरण समैया। बिलावर महला चौथा, मैं मंतन प्रेम अगम ठाकर का, खिन खिन सरदा मन बहुत उठैया। गुर देखे सरदा मन पूरी, जो चातरक प्रयो प्रयो बूंद मुख पैया। मिल मिल सखी हर कथा सुनैया, सतगुर दया करे प्रभ मेले। मैं तिस आगे सिर कट कट पैया, रहाओ रोम रोम मन तन एक बेदन। मैं प्रभ देखे बिन नींद ना पैया, वैदिक नाटक देख भुलाने। मैं हृदय मन तन प्रेम पीर लगैया। हौ खिन पल रह ना सको बिन प्रीतम, जो बिन अमल अमली मर गैया। जिन को प्यास होए प्रभ केरी, तिने अवर ना पावै, बिन हर को दुइया। कोई आन आन मेरा प्रभु मिलावै, हौ तिस विटों बल बल घुम गैया। अनेक जन्म के विछड़े जन्मे ले, जा सत सत सतगुर शरण पवैया। सेज एक एको प्रभ ठाकर, महल ना पावै मनमुख भरमैया। गुर गुर कर तो शरण जे आवै, प्रभ आए मिलै खिन ढील ना पैया। कर कर क्रिया चार वधाए, मन पाखंड कर्म कपट लोबैया। बेसुवै का बेसुवा कै, घर बेटा जन्मया। पिता ताहे क्या नाम सदैया, पूर्व जन्म भगत कर आए। गुर हर हर हर हर भगत जमैया, भगत भगत करते हर पाया। जा हर हर हर हर नाम समैया, प्रभ आन आन मेहंदी पीसाई। आपे कोल कोल अंग लैया, जिन को ठाकर कृपा तारी। बहां पकड़ नानक कढ लैया। राग बिलावल महला पंजवा, अष्टपदी घर बारवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, उपमा जात ना कही मेरे प्रभ की। उपमा जात ना कही, तज आन शरण गही रहाओ। प्रभ चरण कमल आधार, हौ जाऊं सद बलिहार। मन प्रीत लागी ताहे, तजान कत ना जाहे। हर नाम रसना कहन, मल पाप कल मल दहन। चढ़ नाव संत उधार, पैतरे सागर पार। मन डोर प्रेम प्रीत, ए संत निर्मल रीत। तज गए पाप बेकार, हर मिले प्रभ निरंकार। प्रभ पेखी है बिस्माद, चख आनंद पूर्ण साध। नह डोलिए इतियूत, प्रभ बसे हर हर चीत। ते नाहे नरक निवास, नित सिमर प्रभ गुणतास। ते जमना पेखै नैन, सुन मोहे अनहत बैन। हर शरण सूर गोपाल, प्रभ भगत वस दयाल। हर निगम लह ना पेव, नित करै मुन जन सेव। दुख दीन दर्द निवार, जाकी महा बिखड़ी कार। ता की मितना जाने कोए, जल थल महियल सोए। कर बंदना लख बार, थक पर्यो प्रभ दरबार।
ਪ੍ਰਭ ਕਰੋ ਸਾਧੂ ਧੂਰ ਨਾਨਕ ਮਨਸਾ ਪੂਰ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਭ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਵਾਰ ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਦੁਆਰ ਗਹਿ ਚਰਨ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਨ ਮਿਸ਼ਟ ਹਰ ਹਰ ਰੰਗ ਕਰ ਦਇਆ ਲਿਹੋ ਲੜ ਲਾਏ ਨਾਨਕਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਦੀਨਾ ਨਾਹ ਦਇਆਲ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਦੀਨਾ ਨਾਹ ਦਇਆਲ ਜਾਚੋ ਸੰਤਰਵਾਲ ਰਹਾਓ ਸੰਸਾਰ ਵਿਖਿਆ ਕੂਪ ਤਮ ਗਿਆਨ ਮੋਹਤ ਕੂਪ ਗਹਿ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਲੇਹੋ ਹਰਨਾਮ ਆਪਣਾ ਦੇਹੋ ਪ੍ਰਭ ਤੁਝ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਠਾਓ ਨਾਨਕਾ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ ਲੋਭ ਮੋਹੇ ਬਾਂਧੀ ਦੇਹੇ ਬਿਨ ਭਜਨ ਹੋਵਤ ਖੇਹੇ ਜਮ ਦੂਤ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਕਰ ਮੈਂ ਜਾਨ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਸਾਖ ਸੁਣਾਏ ਨਾਨਕਾ ਹਰ ਸਰਨਾਏ ਪੈ ਭੰਜਨਾ ਮੁਰਾਰ ਕਰ ਦਇਆ ਪਤ ਉਧਾਰ ਮੇਰੇ ਦੋ ਗਨੇ ਨਾ ਜਾਹੇ ਹਰ ਬਿਨਾ ਕਤੈ ਸੁਮਾਹੇ ਗਹਿ ਓਟ ਚਿਤਵੀ ਨਾਥ ਨਾਨਕਾ ਦੇ ਰਖ ਹਾਥ ਹਰ ਗੁਣ ਦੇ ਗੋਪਾਲ ਸਰਬ ਘਟ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸ ਗੋਬਿੰਦ ਪੂਰਨ ਆਸ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਵਡ ਭਾਗ ਨਾਨਕ ਪਾਏ ਪ੍ਰਭ ਤੁਝ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚੰਦ ਚਕੋਰ ਜੋ ਮੀਨ ਜਲ ਸੋ ਹੇਤ ਅਲ ਕਮਲ ਪਹਿਨਾ ਪੇਤ ਜਿਉਂ ਚੱਕਵੀ ਸੂਰਜ ਆਸ ਨਾਨਕ ਚਰਨ ਪਿਆਸ ਜਿਉਂ ਤਰਨ ਭਰਤ ਪ੍ਰਾਨ ਜਿਉਂ ਲੋਭੀਐ ਧਨ ਦਾਨ ਜਿਉਂ ਦੂਧ ਜਲੈ ਸੰਜੋਗ ਜਿਉਂ ਮਹਾ ਖੁਦਿਆਰਥ ਭੋਗ ਜਿਉਂ ਮਾਤ ਪੂਤੈ ਹੇਤ ਹਰ ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਨੇਤ ਜਿਉਂ ਦੀਪ ਪਤਨ ਪਤੰਗ ਜਿਉਂ ਚੋਰ ਹਿਰਤ ਨਿਸੰਗ ਮਹਿੰਗ ਲੈ ਕਾ ਮੈਂ ਬੰਦ ਜਿਉਂ ਗ੍ਰਸਤ ਬਿਖਈ ਤੰਦ ਜਿਉਂ ਜੁਆਰ ਬਿਸਨ ਨਾ ਜਾਏ ਹਰ ਨਾਨਕੇ ਹੋ ਮਨ ਲਾਏ ਕੁਰੰਕ ਨਾ ਦੈਨੇ ਹੋ ਚਾਤ੍ਰਕ ਚਾਹਤ ਮੈਂ ਹੋ ਜਨ ਜੀਵਨਾ ਸਤਸੰਗ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨਾ ਰੰਗ ਰਸਨਾ ਬਖਾਨੈ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਨ ਗੁਣ ਗਾਏ ਸੁਨ ਲਿਖ ਦੇ ਸੋ ਸਰਬ ਫਲ ਹਰ ਲੇ ਕੁਲ ਸਮੂਹ ਕਰ ਤੋ ਉਧਾਰ ਸੰਸਾਰ ਉਤਰ ਸਪਾਰ ਹਰ ਚਰਨ ਬੋਇਸਤਤਾ ਹੈ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਸਗਾ

एकमेक अंकार निराला अमरा जोनी जात ना जाला आगमा गोचर रूप ना रेखिया खोजत खोजत कटकट देखिया जो देख देखावै तिसको बल जाई गुर प्रसाद परम पद पाई क्या जप जापो बिन जगदीसै गुर कै शब्द महल कर दीसै रहाओ। दूजे पाए लगे पछताने जमदर बांधे आवन जाने क्या लै आवै क्या ले जाहे सिर जमकाल से चोटा खाहे बिन गुर शब्द ना छूट सकोए पाखंड कीने मुक्त ना होए आपे सच किया कर जोड़ अंडज फोड़ जोड़ विछोड़ धरत आकाश किए बैसन को थाओ रात दिनंत किए पौ पाओ जिन किए कर वेखण हारा अवरना दूजा सिरजनहारा। तृतीया ब्रह्मा विष्णु महेशा देवी देवो पाए वेसा ज्योति जाति गणत ना आवै जिन साजी सो कीमत पावै कीमत पाए रहा भरपूर किस नेड़ै किस आखा दूर। चौथे उपाए चारे बेदा खाणी चारे बाणी पेदा अष्ट दशा खड़ती ने उपाए सो बुझे जस्या बुझाए तीन समावै चौथे वासा प्रणवत नानक हम ताके दासा पंचमी पंचभूत बेताला आपा गोचर पुरख निराला एक ब्रह्म भूखे मोह प्यासे एक रस चाख शब्द तृप्तासे एक रंगराते एक मरतूर एक दर कर सच है देखा दूर झूठे कौ नाही पत नाओ कबो न सूचा काला काओ पिंजर पंखी बंदिया कोए शेरी परमै मुक्त ना होए तव छूटै जा खसम छड़ाए गुरमत मेले भगत रड़ाए खस्ती खट दर्शन प्रभ साजे अनहद शब्द निराला वाजे जे प्रभ पावै ता महल बुलावै शब्दे भेदे तव पद पावै कर कर वेस खपै जल जावै साचे साचे साज समावै। सप्तमी सत संतोख शरीर सात समुद भरे निर्मल नीर मज्जन सील सचरदै विचार गुर कै शब्द पावै सब पार मन साचा मुख साचो पाए सच नी साणै ठाक ना पाए। अष्टमी अष्ट सिद्ध बुद्ध साधै सच नेह केवल कर्म आराधै पौन पानी अग्नि बिसराओ तही निरंजन साचो नाओ तिसमै मनुआ रहे आले बलाए प्रणवत नानक काल ना खाए। नाओ नौमी नवे नाथ नव खंडा घट घट नाथ महाबलवंडा आई पूता एहो जग सारा प्रभ आदेश याद रखवारा आज जुगादी है पी होग ओह परंपर करना जोग। दसवी नामदान इशनान अंदन मज्जन सच्चा गुण ज्ञान सच मैल न लागै भ्रम पहु पागै बिलम न टूट सका चै तागै ज्यों तागा जग एवै जानो अस्त्र चा अस्त्र जी साज रंग माणो एकादशी करदै वसावै हिंसा ममता मोह चुकावै फल पावै व्रत आत्म चीनै पाखंड राज तत् नहीं बीनै निर्मल निराहार नेह केवल सूचे साचे ना लागै मल जै देखो तहे को एका होर जियो पाए वेको वेका फलो हर किए फल जाए रस कस खाए साध गवाए कूड़ै लालच लपटै लपटाए छूटै गुरमुख साच कमाए द्वादश मुंद्रा मन अवदूता अहनस जागै कवै ना सूता जागत जाग रह लिवलाए गुर परचै तस्खाल ना खाए अतीत पहे मारे बैराई प्रणवत नानक तैं लिवलाई द्वादशी दया दान कर जाणै बाहर जातो भीतर आणै बरती बरत रह नेकाम अजपा जाप जपै मुख नाम।
तीन पवन में एको जाना है, सब सुच संयम साच पछाण है, तेर सतरवर समुद्र किनार है, अमृत मूल शिखर लिवतार है, डर डर मरे ना बूढ़े कोए, निडर बूढ़ मरे पत खोए, डर मैं घर घर मैं डर जाना है, तख्त निवास सच मन पहाण है, चौदस चौथे थावे लय पावे, राजस तामस सत्काल समावे, ससियर कह कर सूर समावे, जो जूत की कीमत पावे, चौदस पवन पताल समाए, खंड ब्रह्मंड रहा लिवलाए, अमावस्या चंद गुप्त गहनार, बुझो ज्ञानी शब्द विचार, ससियर गगन जोत त्यो लोई, कर कर वेख करता सोई, गुरते दिसै सो तिसी माहे, मनमुख पूले आवे जाए, घर दर थाप थिरथान सुहावे, आप पछाणे जा सतगुर पावे, जह आसा तह बिनस बिनासा, फूटे खप्पर दुबदा मनसा, ममता जाल ते रह उदासा, प्रणवत नानक हमता के दासा, बिलावल महला तीजा वार सत, कर दसवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद आदित वार, आद पुरख है सोई, आपे वरत वरना कोई, ओत पोत जग रया परोई, आपे करता करे सो होई, नाम रते सदा सुख होई, गुरमुख विरला बूझै कोई, हृदय जपनी जपो गुणतासा, हर अगम्या गोचर परंपर स्वामी, जन पग लग तिहावो होए दसन दासा रहाओ, सोमवार सच रया समाए, तिसकी कीमत कहीं ना जाए, आख आख रहे सब लिवलाए, जिस देवै तिस पल्लै पाए, अगमा गोचर लखिया ना जाए, गुर कै सबधर रया समाए, मंगल माया मोह उपाया, आपे सिर सिर तंदै लाया, आप बुझाए सोई बूझै, गुर कै शब्द दर कर सूझै, प्रेम भगत करे लिवलाए, हम मैं ममता शब्द जलाए, बुधवार आपे बुध सार, गुरम करनी शब्द विचार, नाम रते मन निर्मल होए, हर गुण गावे हम मैं मल खोए, दर सच्चै सद सोभा पाए, नाम रते गुर शब्द सुहाए, लाहा नाम पाए गुरुद्वार, आपे देवै देवनहार, जो देवै तिसको बल जाइए, गुर प्रसादी आप गवाइए, नानक नाम रखो उरतार, देवनहारे कौ जयकार, वीरवार वीर परम पुलाए, प्रेत पूत सब दूजै लाए, आप उपाए कर वेखै वेका, सबना करते तेरी टेका, जी जंत तेरी सरनाई, सो मिले जिस लह मिलाई, शुक्रवार प्रवरया समाई, आप यो पाए सब कीमत पाई, गुरमुख हो वै सो करै विचार, सच संयम करनी है कार, वर्त नेम नितापृत पूजा, बिन बूझे सब पाओ है।